0: लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा

0: आया दौर टॉकी फिल्मों का। 1931 में पहली हिंदी टॉकी फिल्म आलम आरा बनाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अर्देशिर ईरानी ने। इस फिल्म के संगीतकार थे फिरोज शाह मिस्त्री।
1: टॉकी फिल्म उसके अंदर दो कंपोजर थे वो। उसके बाद में फिर ये जो दौर चला उसके अपने कलकत्ता में ये फिल्म मिस्ट्री बनी। और फिर आपको बताया कि रायचंद बरोल, तिमिर बरन, पंकज मलिक और भी अच्छे अच्छे नाम हैं, मन्ना डे के सरस्वती देवी। फिर उस जमाने में क्या था, जो गुरु होते थे वो खुद ही गाते थे और क्या होता रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन जो है वो लेके घुमा करते थे। तो समझो हीरोइन नहा रही है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे सीन्स ज़्यादा रखते थे लोगों को। तो वो पेड़ के नीचे गा रही है हीरोइन, तो पेड़ के ऊपर वो तबले वाले और हारमोनियम वाले बैठ जाते थे और वो ऊपर से बजा रहे थे और नीचे गाते थे। वो पानी में नहा रही है तो अपना वो बेचारे धोती ऊपर करके पहले ऊपर करके चलते

0: मेरे पिताजी ने बताया था, नाम प्रसाद शर्मा, खबर बैठे थे।
1: बस इसी तरह शुरू हुआ हिंदी फिल्म संगीत का कभी ना खत्म होने वाला सफर। टॉकी फिल्मों के आने से उस जमाने के संगीतकारों को मौका मिला हिंदी फिल्म संगीत को सुर, ताल और लय से सवारने का। साइलेंट इरा में आरसी बोरल के साथ ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट करते करते पंकज मलिक मशहूर न्यू थिएटर बैनर का एक अनमोल हिस्सा बन गए। 1931 से 1952 तक उनके यादगार संगीत से सजी थी फिल्में माया, मुक्ति, नर्तकी, डॉक्टर और उनकी आखिरी हिंदी फिल्म जलजला।
2: अपने जमाने में पंकज मलिक ने फिल्म संगीत को एक नई राह दिखाई। आज के फिल्मी गीतों में वेस्टर्न म्यूजिक का जो रूप नजर आता है उसे करीबन 50 साल पहले शुरू किया था पंकज मलिक ने। उनके संगीत की तरह उनके गाए हुए गीत भी बहुत मशहूर हुए। नागपुर में जब मैं उनसे पहली बार मिली तो बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ गीत बनाना चाहता हूँ, पर जिंदगी ने उन्हें ये मौका ही नहीं दिया।

उसी समय के एक और नामी संगीतकार थे पंजाब से आए उस्ताद झंडे खान जी। एक ऐसा नाम जिसे लोग पूछते थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के माहिर मास्टर भी माने जाते थे।

साइलेंट ईरा और टॉकी फिल्मों के शुरुआती दौर में एक ऐसा माहौल था जिसमें औरतों का फिल्मों में होना नामुमकिन सी बात थी। तवायफें भी फिल्म में काम करने से कतराती थीं। इसलिए इस दौर के संगीतकारों की बात सरस्वती देवी और जदन बाई के बगैर अधूरी है। सरस्वती देवी यानी खुर्शीद होमजी, उन्होंने 1935 की फिल्म जवानी की हवा में पहली बार संगीत दिया। उनके संगीत में 1936 में आई फिल्म जीवन नैया अशोक कुमार की पहली फिल्म थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म में अशोक कुमार का गाया एक गीत 1961 में फिल्म झुमरू में उनके ही भाई किशोर कुमार ने धुन और बोल कायम रख दोबारा पेश किया था।

सरस्वती देवी अपनी तीन बहनों के साथ ऑल इंडिया रेडियो पर होमजी सिस्टर्स के नाम से गीत गाया करती थी। फिर आई 1936 में सरस्वती देवी की सबसे कामयाब फिल्म अछूत कन्या। ये एक इकलौती फिल्म थी जिसे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने देखा और सराहा भी। फिल्म में सरस्वती देवी की रचनाओं में से सबसे यादगार बना अशोक कुमार और देविका रानी का गाया ये गीत।

इस दौर की दूसरी प्रसिद्ध संगीतकार थी फिल्म एक्ट्रेस नरगिस की माँ जदन बाई। माना जाता है कि जदन बाई पहली फीमेल हिंदी संगीतकार बनी। 1940 की बदलती हवाओं के साथ संगीत के 100 सालों की दास्तां अभी और भी है। 1940 के बाद देश में एक अजीबोगरीब पनपती हुई बेचैनी, एक आजाद सोच की लहर दौड़ रही थी। रुख बदला, हवाएं बदली और साथ बदला हमारा संगीत। जैसे हमने देखा, फिल्म संगीत ज्यादातर भक्ति और नाट्य संगीत से प्रभावित था। इस किस्म के संगीत की बेड़ियों को तोड़ कई संगीतकारों ने फोक यानी लोक संगीत और वेस्टर्न संगीत अपनाया। इस बदलते संगीत की 1935 में संगीतकार अनिल बिस्वास ने

अनिल्दा की पहली फिल्म बतौर संगीतकार थी 1935 की सुपरहिट धर्म की देवी। फिल्म मनमोहन से अनिल्दा की महबूब खान से दोस्ती की शुरुआत हुई। वे इतने करीबी दोस्त बन गए कि अनिल्दा महबूब खान को मवाली बुलाते और महबूब खान उन्हें बंगाली। 1940 में आई महबूब खान की फिल्म औरत। ये फिल्म और अनिल्दा का संगीत दोनों कामयाबी की हर सीमा को पार कर गया।

0: 1943 में आई अनिल बिस्वास के संगीत से सवरी उनकी सबसे कामयाब फिल्म किस्मत। फिल्म किस्मत 3 सालों तक हाउसफुल रही और इसका रिकॉर्ड तोड़ा 33 साल के लंबे अरसे बाद 1976 में फिल्म शोले ने। किस्मत फिल्म के क्विट इंडिया के जज्बातों को हवा देता ये गीत देशवासियों का जैसे नारा सा बन गया और अंग्रेज सरकार को डरा सा गया।
1: दूर है तो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अनिल साहब का म्यूजिक है और कभी प्रदीप जी का लिखा हुआ है, क्या कहें, बच्चे बच्चे ने उसे गाए।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Stop it!
1: अब्राम अब्राम छोड़ दे इसे, क्या कितने
2: ये लड़की ऐसे ही आग लगाएगी।
3: ये मोटी।